आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हां आखिया जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नूं जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तों बगैर। अज दूजा दिन होया इन्हें सोचिया भी हुण मैं रात नूं ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी जांदी।

तेरी बाणी विच बड़ियां रहमता ने। साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दी उदाहरण दे के भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तेनू आप बचा लवेगा।

रंग न लाए, संतां से भी रंग न लाए, साकत संग विकर्म ताकत संग विकर्म कमाए। दुर्लभ देह कोई अज्ञानी,

उस पवित्र स्थान की बेदबी हो जिथों की चरण धूरी ब्रह्मा बिशन महेश 33 करोड़ देवते तीर पैगंबर औलिया जिस दर की चरण धूरी मस्तक से ला के अपने तन पाद समझते हो उस दर की बेदबी हो रही हो तू वा होर के पाप है भाई होर के अखिरत घनता है इस फिर जा सिकदार है पवै गंगीरी चाकर वड़ा होवा दुनीदार सारे जसो वड़ा होवा दुनीदार कल संगल खत चलाए खत अगे करनी कीरत वाचिए बैलेखा कर समझाया थाओ ना हो भी पौंदी हुण सुने कहरवाया जद वही दरगाह विच जाके मुंह विखावेगा फिर उथे तेरी कोई कूक पुकार सुनेगा उथे किसे ने नहीं सुनी हुण सुनिए कहरवाया ते फिर उपरों पवेगी मार जमा दी ते आवाज आवेगी मन अंधे जन्म गवाया तू जन्म गवा दिता है अपना इस नहीं जा

गुरु की संगत, आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए कीर्तन।

कवन कवन गुण कह कह गावा, तुम साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तुम ठाकुर ऊच भगवाना।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जावे। सात सगत बोलो श्री दुर्दे होए पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिठ हो रही है हुण इथों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच

ए ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नितनेम विच फर्क ना पवे तां बख्शीशां दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शे।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता। बिन नेत्रा कहां को पिख, नाम बिना नर कहीं न लिख। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमर कैसे राज मंडित।